0: पार्टी उपस्थितिका लागि सम्पूर्ण शेर सदस्यज्यूहरूमा अनुरोध गर्दछौ।
1: खड्ग बहादुर खड्का सचिव जनउपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड गौरीशंकर दुई जुगु दोलखा।

मनोरंजन साहित्य और कला। संस्कृति पर्यटन र विकास का लागि जनपक्षीय आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज।

समाचार विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन विकास कला जन पक्षीय आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।